अपने दूसरी चिट्ठी लिखी तेरा मुख सुहावा जी सहज धुन बाणी चिर गोवा देखे सारंग पानी तन सो देश ते गुरु पिता आपदा सुंदर स्वरूप मैं कदी अखां तो ओले नहीं सी वेख सकदा पर हुण तक कितनी मुद्दत बीत गई तेरा दीदार नहीं होया धन सो देश।

जिवें हथेली ते औला रखिया हो। ओ तां घट घट के अंतर की जानत है, पर इसने सोचिया शायद मैं चिट्ठियां लको लवांगा ते मेरा कम बन जावे। छिख नूं कह दिता।

ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जीओ ए अखर लिख के उसे शेख नु बुलाया गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे भाई गुरु के लाल अगलिया चिट्ठिया तो तू प्रिथिया जी नु दित्तिया हन पर याद रखी ए ना उस नु देवी ए सतगुरां दे चरणा विच जाके रखी क्योंकि आप नु शक हो गया सी कि ए पत्र कामा पृथ्वी चंद ने हजूर नु नहीं पहुंचेंगे क्यों कह के सिख नु तागीद करके तोरिया सिख आया उसने देखिया पृथ्वी चंद सेवा करवा रहा है उसने ओ रस्ता ही छड दिता उस पासे दी जिथे गुरु जी बैठे सन उसे जाके पहुंचिया मत्था टेकिया करीब निवाज में अर्जुन देव जी दी पत्रिका लै आया मत्था टेक के बैठ गया जदों पत्रिका गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने पढ़ी अवस्था देख के इतना प्यार देख के आपदा मन द्रव गया भावे अंतर जामी सन सब कुछ जान दे सन केड़ा भुले सन लेकिन ए बाज किरिया देख के आप जी दा चित अति द्रवीभूत होया उस मौके ही बाबा बुढ़ा आद पंज मुखी सिखां नू बुलाया हुक्म होया जाओ लाहौर अर्जन देव नू लै आओ ओ सानू मिलन वास्ते बहुत व्याकुल हन बड़े बेबल हन ए सिख जांदे हन लाहौर पहुंचदे हन श्री अर्जन देव जी नू कहा आप नू हजूर श्री रामदास सच्चे पातशाह जी ने याद की अज ए पत्रिका तुहाडी साहिब जी नू पहुंची जदों अर्जन देव जी नू लै के अमृतसर पहुंचे दरबार विच हजूर सुशोभित सन चरणा विच हाजिर हो गए हजूर दा रूहानी दरबार लग्या है बड़े कीमती शामियाने लगे हन कीमती फर्श विछे होए हन बहुत सारी संगत हजूरी विच बैठी हुई हजूर दे इउं दर्शन कर रही है जिवें करोड़ों चकोर चंद्रमा वल एक टक लगा के देख दे हन गर्दन पावे मुरड़ जाए दीदार करनू नहीं हट दे कन्ना नाल गुरु की बाणी सुन दे हन जबान करके बाणी दा उचारण कर दे हन निरंतर सिमरन करन वाले प्रेमी इथे जुड़े बैठे हन ऐसा सिमरन ऐसी ब्रह्म ज्ञानियां दी सभा विच जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह पहुंचे तां अपने गुरु पिता दे चरणा ते जाके मस्तक रख दिता नैणा दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते अंतर गुर आराधना जेवा जप गुरु

ऐसा अलोकित सचखंड दा नक्शा ते इधर एडी बेबलता के हजूर ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं प्यार दिता ते पुछन लगे अर्जन देव आ जेड़ी तू चिट्ठी लिखी है एदे उपर तीसरा अंग पाया होया है, इस तो पहला भी कोई चिट्ठियां लिखिया हो? क्या गरीब निवाज सच्चे पातशाह दो चिट्ठियां पहले लिखिया सन, तां ओ आप जी नूं पहुंचिया नहीं। पृथ्वी नूं बुलाया, महाराज मैनू तां कोई सिख ने चिट्ठी नहीं दिती। धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, भाई इथे गुरु दरबार विच मुकरना ठीक नहीं, सच सच कह दे। ते जे तू सच नहीं कहेगा तां असीं जिथे पईआं हन सेवक नूं भेज के तेरे घरों मंगवा लवांगे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। सेवादार भेजिया जेड़ी थां साहिब जी ने दसी सी उथों जाके चिट्ठियां ले आया। धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, लो भाई हुण जेड़ा चौथी चिट्ठी उच्चारण करेगा ना गद्दी दा हकदार ओ होवेगा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने चरणा ते सिर रख्या होया, मुड़ मुड़ चरणा नूं चुमदे हन, मुड़ मुड़ दर्शन करदे हन। मेरा

कौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना कर दी है, आपे दी खोज कर दी है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत् दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी की सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का फरमान है, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे, पाने चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दिया 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर, पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोरी है बाही जनाजी पकड़ी है सिर दीजै बाही ना छोटी है असी जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी है सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिया बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

चंगे आदमी नाल दोस्ती करिए, चंगिया गल्लां दसेगा। माड़े आदमी नाल दोस्ती करांगे, गल्लां भी माड़ियां करेगा ते लेके भी माड़े पासे जाएगा। सज्जन दोस्त कई तरह दे, एक ओ सज्जन जिन्हों कच्चा सज्जन कहते, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़े पासे ले जाए, उन्हों कहते ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छड़ गुरुद्वारे मंदिर की जाना, आपा किधरे दूसरे पासे चलते, ओ कच्चा सज्जन कच्चा दोस्त। पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे, उन्हों आखे छड़ माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी, किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जिहड़ा मोड़े, ओ पक्का सज्जन।

शहर आके लंगर छक गए, पर एक आदमी बड़ा हंकारी जापदे, ओ लंगर छकन वास्ते नहीं।

मैं देखा फिर एक इन्नी शक्ति दा मालिक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगता जो कि आसन ला के बह गया रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन उन रिधियां सिद्धियां दे सदे

पर पाए दिल को उन्हों का मन गुरु नाल जुड़े है ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिया चीजा लागे नहीं आंदी। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने पाए तिल को बुआ खोल लंगर खा नहीं तो तेनू मार देंगे। हुण जिस गुरु की ओट पाए तिल को ने लई ओ गुरु पाए तिल को की रखिया कर रहे है उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जेड़ी चुक के पिछा सुट दिंदी है।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता, उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नी ते सारियां दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहिब।

इस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां उच लग गए। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कह दोस्ती करनी उन्होंने।

जोगी कहन लगा दिल को तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु दे पर एक गल दस तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने।

बैठा समुंदर दी सैर कर रहा सा, अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए, मलाह कहन लगे बचन दी कोई उम्मीद है, तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पी। इस तरह लगता है होन डूबी कि होन डूबी। मलाह कहन लगा जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

लगता भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दे। जदो सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए।

परमात्मा अकाल पुरख की उस तत्वड़ियाई दसी। भगत कबीर जी कहते ने, हे भाई आ उस सतगुरु की पूजा कर, उसकी आरती इंज गायन कर जिवें कि ओ परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है ते उसनू याद भी वड्याइयां दे नाल कर। हुण सतगुर की पूजा की है, सतगुर की आरती की है? प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन शब्दों के अर्थ बड़े सुंदर किए ने। लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई गुरु की आरती, सतगुर की आरती, गुरु की पूजा, गुरु के हुक्म मुताबक चलना, गुरु के दसे मार्ग से तुरना, जिवें गुरु चलावे उवें चलना, ते गुरु के बाणे विच गुरु की रजा विच रहना, यह गुरु की आरती है। ते गुरसिख नेता प्रति उस मालक की आरती विच जुड़े आ रहे हैं। ते कहिंदे ने आरती है, आरती करके परमात्मा की पूजा करके परमात्मा नूं रजा के उहदे कोलों कुछ मंगना, इहनूं कहिंदे ने आरती। परमात्मा कोल कुछ डिमांड करनी, कुछ जाचना करनी, उहदे अगे अरदास करके उहदे कोलों कुछ मंगना है। सो सतगुरु जी ने ख्याल बड़ा सुंदर दिता है। कल आपां गगन में थाल अता शबद बजंत पेरी रहाओ, इथों तक आपां विचार सरवण कीती सी। आओ अगले तुकां दी विचार अज आरंभ करिए कि सतगुरु जी ने सानू इस विच उपदेश कैसा दिता है ते भगत कबीर जी की कह रहे ने। इधर भगत कबीर जी ने बाणी विच कुछ आरती दे बचन कहे ने, इधरों धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने, आपां दोनां नूं सरवण करना है कि उस मालक की पूजा उस मालक की आरती किवें कीती जा सकती है। सहस तब नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नन्ना एक तोई। सहस तब नैन नन नैन है तोए, हे परमात्मा तेरे सैकड़े अनेक ही नैन हैं, हजारां दी गिनती विच तेरे नैन हन। सहस तब नैन, हुण फिर अगे लफज आ गए है, सहस तब नैन नन नैन है तोए। हे परमात्मा तू प्रगट भी है ते तू गुप्त भी है, जिवें तेरे हजारां नैन हन ते अकाल पुरख होण दे नाते तेरा कोई भी नैन नहीं है। हजारां तेरियां अखां हन लेकिन तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तब नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नना एक तोए। एक पासे कहिंदे ने तेरियां सहस मूरतां ने हजारां, पर हे अकाल पुरख जे तेरी वडियाई वल जुड़िया जाए तेरी कोई मूरत नहीं है, क्योंकि तू मूरत तो रहता है, तेरा कोई चिन्ह चक्र नहीं है, तेरा कोई आकार नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने

में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर थां रमिया होया है, इसी तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत लाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है, पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, तो फिर की हुंदा है,

परमेश्वर कहायो पट अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करदे ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक साहब नमस्कार करते हैं।

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी, पर मिली

कई साल करते रहे, हुण सेवा परवान होण दा समा आया। रोज दी तरह अज भी अमरदास जी पानी दी गागर सिर ते चुकी हुई प्यासा दरिया पहुंचे। मन दी भावना कैसी, पहला पानी दी गागर दरिया विच भर दे, उस गागर नूं सिर ते चुक के फिर आप इशनान करदे ने ते फिर वापस खडूर साहिब आंदे। ए कुछ मीलां दा सफर रोज पैदल तय करदे। अज जद पानी दी गागर लैके वापस मुड़े, दो तीन बजे दा वेला रोज दी तरह आ रहे ने, पैर नूं ठोकर लगी, अमरदास जी थल्ले डिग पए, अपनियां सट्टां दी परवाह ना कीती पर पानी दी गागर ना डिगण दित्ती, क्योंकि गुरु नूं इशनान कराना है। कोल जुलाया दा घर सी, डिगण दा खड़ाक होया। जुलाया घरवाली नूं कहण लगा, खड़ाक होया कौन हो सकदा है, अद्धी रात दा वेला है, इस तरह लगदा जिवें कोई डिगा है। जुलाई दी घरवाली जुलाई कहण लगी, कौन हो सकदा है इस वेले, इको ही तां है अमरू नी थावां जड़ा रोज रात नूं इथों पानी लैके लंघदा है। है बुढ़ा पर रात नूं भी चैन नहीं, कोई टिकाणा हुंदा ते टिक के बहिंदा, ए निथावां है इहदा कोई थां नहीं। जुलाई ने जदू ए गल कही, ए अमरू निथावां है, ते अमरदास जी हस पए। हसदिया होया सहस बा बचन कीता, चली ना होवे पागल ना होवे, इनू की पता कि मैं था वाला, मैं निथावा नहीं, मेरा था ता गुरु नानक है, मेरा था गुरु अंगद है, मैं तो गुरु वाला वा, मैं निथावा कितने। ये बचन कहते हैं पानी दी गागर लैके गुरु दरबार आ पहुंचे, अपने गुरु नु इशनान कराया। पर अज कुछ नजारा हो रही हो गया, उधर जुलाई चली हो गई, जिसने कहा से अमरू निथावा है, क्योंकि महापुरुषां दे बचन सह सुभाव होंदे ने और वो बदलदे ने। अज वो गुरु अंगद साहब जिन्हां दी सेवा अमरदास जी करिया करदे सन, उन्हें हैरान कर दिता दुनिया नू, जद अपने सेवक अमरदास नू कहा, अमरदास तुसा बड़ी सेवा कीती, तुहाडी सेवा प्रवान हो गई, हुण जिस सिंघासन ते गुरु अंगद साहब बैठा करदे सन उत्थे अपने सेवक अमरदास नू बिठा दिता। पांच पैसे नारियल लगे रखिया, परिक्रमा कीती, गुरु अंगद साहब ने अपने सेवक अमरदास की परिक्रमा करके फिर गुरु ने आप अपने सेवक नु मथा टेक दिता ते कहा, अमरदास हुण तू सेवक नहीं, हुण तू गुरु नानक का रूप हो गए, हुण तू गुरु है ते मैं तेरा सेवक हां। इन्ने नूं ओ जुलाया भी अपनी घरवाली नूं लैके आ गया, महाराज ए भुल गई, इनू बख्श दिओ। तां गुरु अंगद साहब कहण लगे, भाई गुरु नानक दा दर बख्शंद है, तेरी घरवाली ने कहा सी अमरू नी थावां है, पर हुण देखो ए थां वाला है,
ਇਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਓ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਜੂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਗਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बनी गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

संगीत भुजन प्रयास छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग पीरम तो कंकड़ाकं कागर दंग काटी कटारी कड़ाकं दिरना दिरना दिरना दद्र दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना दगड़ दी धर्म धृतांग दागड़ दी देम दिरना दागड़ दी धर्म धृतांग दागड़ दी देम दिरना दागड़ दी धर्म धृतांग दागड़ दी देम दिरना दागड़ दी धर्म धृतांग दागड़ दी देम दिरना दगड़ दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना दगड़ दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना दगड़ दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी तुम